क्यों सो रहा, क्या तो कम है ये लिबास नहीं पोशाक है। क्यों सो रहा हूँ मरीज में,

छाती फूल जाती है सच बोल रहा हूँ सिर भी दुखता है चल नाचते हैं अब ये हालात है दिल कूद रहा है सिर चन रहा है